0: Leica Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ. हमारे राम, बुक योर टिकट नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: सारी रात Bollywood classics का साथ. सिर्फ Leica Gold पर.

ताली तक धीमी तक ताली तक धीमी तक धलाम तो तक धुक तक ताजी के नेतू तक नक तक झूम तक नक नक झूम तक नक नक झूम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी के डे ताली झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी के डे झम तारी जग तारी तक नक तक तक झिन्द तक झिन्द तक झिन्द तक झम तारी जग तारी जाने जाने को

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Laika Gold par.

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: ये है लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Classic Nahumi, aapke apne Laika Gold par.

0: Like a Gold।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाही।

जाने मन कोए। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पौन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वार्या न जावा एक वार, जो तुद भावे साई।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें, एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: अवेलेबल है 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: London make महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेम्पल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेम्पल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 0793262385252
9: रामकृष्ण हरी UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LEICA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
12: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

0: अजीब दास्तां है ये. What a beautiful track in the vocals of लता मंगेशकर. ऐसे वाले गाने ही गोल्ड को गोल्ड बनाते हैं. दिस इज लाइक अ गोल्ड. आई एम वीर गिविंग यू कंपनी ऑल द वे टिल 10 AM. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर. स्टे ट्यून्ड.
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: Odisha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग,
0: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल journey.
3: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
3: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111 or visit sonatours.co.uk.
5: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बैठो। अब तबीयत कैसी है? तबीयत क्या हुआ है मुझे? क्या मैं बीमार लगती हूं, पागल लगती हूं? नहीं, अब कौन सी तरकीब सोच रही हो मुझे डराने की?
1: क्या
0: आज रात क्या खेल खेलोगी मुझे डराने के लिए?
1: तुम्हें मुझसे डर लगता है क्यों कविता?
0: पिछले
2: ओह माय गॉड, यू नो व्हाट, आई जस्ट सॉ दिस सीन एंड आई हैव गॉट गूज़बम्प्स। क्या ब्यूटीफुल एक्टिंग है। सो मैसेज मी एंड लेट मी नो ये मूवी कौन सी है।
3: WhatsApp message like a gold now on 0744-23-23-23. Like a gold. Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: सागर जैसी आंखों वाली इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द मूवी सागर ऋषि कपूर एंड द गॉर्जियस डिंपल कपाड़िया.
1: ये है लाइक अ गोल्ड. 10:35 AM
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: London में एक महान धार्मिक अवसर Unity in Divinity presents महासोम यज्ञ 14 से 21 जून Woodlane Stanmore के Temple Grounds पर. फ्री एंट्री. सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेम्पल ग्राउंड्स Woodlane Stanmore HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932623852.
8: इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड दिस इज इंडियाज लाइनअप.
9: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून. बी देयर.
8: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज. देयर्स अ चांस.
10: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers. Showcase live on the runway featuring special guest actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group. 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989972879.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री. परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: जी हाँ, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, परफेक्ट फॉर द मॉर्निंग मंत्र. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट ऑफ कोर्स वी गॉट टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड कैरी ऑन, बिकॉज यस वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर. व्हाट अ लवली ट्रैक फ्रॉम द सुपर हिट मूवी वक्त. आई लव द स्टार कास्ट, साधना, शर्मिला टैगोर एंड द लेजेंड्स राजकुमार एंड सुनील दत्त विद the lovely Shashi Kapoor. Balraj Sahani was also there in this movie, a multi-starrer directed by Yash Chopra. What lovely tracks, only on Alaika Gold.
1: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
2: ये है
3: Alaika Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस.

0: है ना ये परफेक्ट वाला गाना फॉर दिस अमेजिंग वेदर. वेल पीपल कंप्लेन की बारिश हो रही है बट आई काइंड ऑफ एंजॉय द रेन्स एंड आई थिंक दिस सॉन्ग ये मौसम भीगा भीगा है इज अ परफेक्ट सॉन्ग फॉर दिस वेदर इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड रफी साहब.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold's trading at £108.13 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.

0: जी हाँ, आने वाला पल जाने वाला है एंड एक और सॉन्ग आफ्टर दिस लवली ट्रैक एंड इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय. वेल, इट्स जस्ट अ बाय फॉर टुडे. आई विल बी विद यू टुमारो. रिमेंबर, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड बिकॉज नेक्स्ट अप इज द लवली रवि शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड.
1: Another huge giveaway is coming.

0: गुड मॉर्निंग। जिंदगी की एक और सौगात, एक और मुलाकात, संगीत के सुहाने सफर पर आपका हमारा एक और साथ। मंगलवार वर्ष 2026 के जून महीने की 2 तारीख और बहन भाइयों, एक और मनोरंजन कार्यक्रम लेकर आपका दोस्त रवि शर्मा स्टूडियो में हाजिर है। अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और भाई बहुत सारी क्या कहे अटखेलियां शरारतें, भाई शरारत तो चाहिए ना। थोड़ी सी संजीदगी, ज्यादा शरारत चाहिए, कहे कहे मुस्कान खुशियां और मसरत चाहिए। ऑक्सीजन मांगता है कौन जीने के लिए, अरे साहब जिंदा रहने के लिए हमको मोहब्बत चाहिए। गुर सिखाते हैं हंसी के मुफ्त हर बुधवार को मंगलवार को सोमवार को, यानी 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार। बस सीखने की आप में थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। पर से हल्की मुस्कुराहट जीत ले एक पल में दिल, पहलवानी चाहिए ना कोई ताकत चाहिए। जिंदा रहने के लिए हमको मोहब्बत चाहिए और मोहब्बत के लिए आपकी इजाजत चाहिए।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: ऑक्सीजन मांगता है कौन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमको मोहब्बत चाहिए और मोहब्बत के लिए उनकी इजाजत चाहिए। किनकी? वो कह रहे राधा की। हाँ?

0: जूतों पर भी गीत बने हैं भाई, कई बने हैं। हाँ, वो जूते दे दो पैसे ले लो, वो भी सुना होगा आपने। जूतों का जिक्र शायरी में भी होता है, कविता में होता है, साहित्य में होता है। अरे साहब, इतने गए गुजरे और जूते की एक खास बताएं आपको भाई। जूता बड़ा वफादार होता है, जैसे अगर एक जूता टूट जाए तो दूसरा चलने से इनकार कर देता है, एक किसी काम का नहीं। दोनों साथ रहेंगे जिंदगी भर, आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक। भाई जूतों के ऊपर हमारे डॉक्टर सत्य शर्मा जी ने बड़ा बढ़िया लिख के भेजा है। कहते जूतों के बारे में इतने मुहावरे हैं, किसी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो कहने लगे जूते ने काट लिया। अरे वाह, जूता काटता भी है। एक दिन उन्हें जूते में तेल लगाते देखा, पूछा भाई क्या बात है, कहने लगे जूता चूचू करता है, आवाज करता है, जूता बोलता भी है। और साहब फिर एक दिन किसी के बारे में ये कहते सुना कि वो तो सिर्फ जूते का यार है। अरे ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा, जूतों का यार है, जूते दोस्ती भी निभाते हैं। और भाई कल चाचा जी अपने बेटे को डांट रहे थे, कह रहे थे तू जूते खाए बिना नहीं मानेगा, जूते खाए भी जाते। होली पर देखा कि एक मूर्ख को गधे पर बिठाकर उसे के गले में जूतों की माला पहनाई गई थी, तब समझ में आया कि भाई जूते जो है वो सम्मान देने का भी काम करते हैं, हार बनकर के गले में डाले जाते हैं बना करके। और फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है, मतलब ये है कि इनाम में भी सोने का जूता। किसी ने बताया कि विदेशी फिल्म और टीवी जगत में भी श्रेष्ठ कलाकारों को गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। अब ये समझ में नहीं आता कि ये सम्मान, ये ऑनर, ये एजाज एक्टर का हो रहा है या जूते का। और आपको पता है जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, तो उसको जूता सुंघाते हैं। मतलब मेडिसिन का काम भी करता है। और शादी में दूल्हे की सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं, वापसी के बदले पैसे मांगती हैं। मतलब ये है कि भाई जूते का अपहरण भी होता है। और जूते की सिटीजनशिप भी होता है, होती है, ये पता आपको? ये गाना बता रहा है, मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता भाई कहाँ का है, इटालियन है। मतलब उसकी सिटीजनशिप भी होती है, उसके देश का भी नाम होता है। जूता काटता है, जूता बोलता है, जूता दोस्ती निभाता है, जूता खाया जाता है, सम्मान दिलाता है, मेडिसिन है, उसका अपहरण होता है और उसकी सिटीजनशिप भी। क्या बात है, जूते जी आपको सलाम है। एक बात तो आपने महसूस की होगी बहनों भाइयों, कि आज प्रोग्राम के जो दो गीत बैक टू बैक हमने आपको सुनवाए, दोनों गीतों ने एक महान शोमैन की याद दिलाई। कौन? वन एंड ओनली राज कपूर। भाई आज उनकी पुण्यतिथि है, अगर उनका थोड़ा सा जिक्र हो जाए। वैसे तो आप जानते हैं कि फिल्मी दुनिया पर बाली भाई का एक अधिकार है और वो चाहते हैं कि वो ही करें, लेकिन एक आध गाना भाई ज़रूर सरका देंगे हम एक दो बातों के साथ। क्योंकि जब राज कपूर साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और जो अवार्ड लेते हुए वहीं से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, तो उस स्थिति का जिक्र करना ज़रूरी है। दिल्ली में वहीं से सीधा उनको राष्ट्रपति भवन से AIIMS ले जाया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हिंदी में कहेंगे। तो साहब वहाँ कुछ समय तक उनका इलाज चला, लेकिन वो कभी उभरे नहीं वहाँ से। वो फिर जो कहिए कि ऊपर ही चले गए, लेकिन उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आती थी, मैं पढ़ता था और मुझे अब तक नाम याद है डॉक्टर्स के, डॉक्टर सुभाष मनचंदा, डॉक्टर नरेश त्रेहन, वह जो राज कपूर साहब का इलाज कर रहे थे। लेकिन 2 जून के दिन इस महान शोमैन ने आँखें मूंद ली और जाते जाते भाई अपने गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, संवादों के जरिए और फिल्मों के भाई माध्यम से राज कपूर जो संदेश दे गए, उसका जिक्र करना ज़रूरी है। खैर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। माय नेम इज़ रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। एंड भाई आज मंगलवार के दिन जुड़े रहिएगा मेरे साथ। राज कपूर के साथ साथ और भी कुछ लोगों की पुण्यतिथि है। एक पंडित श्री राम शर्मा, आप जो चिंतन सुनते हैं ना बहनों भाइयों, ये कई चिंतन जो हैं आते हैं श्री राम शर्मा जी की पुस्तक प्रज्ञा पुराण से। अगर आप ले सके ना तो इतने चिंतन मिलेंगे उसमें भाई। ये किताब जो है हरिद्वार से प्रकाशित हुई और बड़ी बड़ी कहानियाँ, इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स, महापुरुषों के जीवन की कथाएँ, वही ऐतिहासिक विवरण भी बहुत कुछ है उसमें। और पंडित श्री राम शर्मा जी की भी आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। राइट, लेट्स फाइंड आउट द पाउंड रेट नाउ। गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India. Your £1 in your pocket today could get you maximum, in Indian currency, maximum 127.9 rupees. 127 रुपए 90 पैसे का रेट चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी है। Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: गुड मॉर्निंग, ये है लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल और हिजबुल्ला में झड़पें जारी हैं। रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं, 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 1 हफ्ते में समझौता हो सकता है। मणिपुरी फिल्म बूंग ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जीते 3 अवार्ड। हिजबुल्ला और इसराइल के बीच सीज फायर को लेकर एक अहम समझौता हुआ है और आरसीबी के बल्लेबाज टिम डेविड आईपीएल 2027 के पहले मैच से सस्पेंड हुए हैं। आईपीएल जीत लिया है भाई आरसीबी ने, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला अब आया है कि अगले साल जो आईपीएल होगा उसके पहले मैच में सस्पेंड रहेंगे टिम डेविड, बेंगलुरु के ये प्लेयर हैं। विस्तार से खबरें। ट्रंप के ऐलान के बावजूद, अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, बिचौलियेपन के बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद साउथ लेबनान में झड़पें अब भी जारी हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने उत्तरी इसराइल के 2 गांवों के पास इसराइली टैंकों और फौजियों पर हमले किए हैं। दूसरी तरफ इसराइली फौजी ने कहा है कि उसने लेबनान से दागे गए 2 प्रोजेक्टाइल को रोक दिया है। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। भारत से आने वाली खबरों में, दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडर के फटने से 1 मंजिला मकान गिरा, इसमें कम से कम 4 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा आज सुबह 9:37 पर भारतीय समय के अनुसार हुआ और वो मकान जब गिरा तो कॉल करने वाले ने बताया कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम गई, बचाव कार्य शुरू हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए बताए जाते हैं। अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट अधिनियम किससे जुड़े एक मामले में की गई है, जिसके तहत ईडी ने तलाशी अभियान चलाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स पर पक्षपात का इल्जाम लगाया, साइड लेने का, जिसके बाद ईरान ने इस पर रिएक्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ईरान अपनी नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह खत्म मान ले और फौज अपने हथियार जमीन पर रख दे और सफेद झंडा

0: करते हैं, अगर आप समुद्री नाकाबंदी हटाते हैं, कठोर पाबंदियों को ख़त्म करते हैं और इस जंग से हुई भारी तबाही का मुआवजा देते हैं, तो हम खुशी से दुनिया को बताएंगे कि आपने एक बड़ी हिस्टोरिकल जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये समझौता युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़ा होगा। इतनी सारी शर्तों के साथ भाई लगता है अभी ये समझौता कार्य रूप में नहीं आया है, आना जल्दी नजर भी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ रूस ने कल सोमवार की रात को यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा हमला किया है, जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के द्वीप्रो में 4 लोगों की मौत हुई, 16 जख्मी हुए, जबकि कीव में भी 1 व्यक्ति की मौत और 29 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। पिछले हफ्ते रूस ने वार्निंग दी थी कि वो निरंतर ये काम करेगा। ये चेतावनी उस ड्रोन हमले के बाद आई थी जो पिछले महीने यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके के एक हॉस्टल पर हुआ था, जिसमें 21 लोग मारे गए थे। भारत से आने वाली खबरों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि 12वीं क्लास की परीक्षा से जुड़ा वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन वाला पोर्टल अब चालू हो चुका है। इसके बाद जरूरी जानकारियां भरनी होंगी और फिर पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप लगातार इसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अमेरिका में ऑपरेशन चेकमेट के तहत लगभग 30 इंडियन सिटीजन्स को अरेस्ट किया गया है। इन पर इल्जाम है कि ये गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, ट्रक ड्राइवर्स के रूप में काम कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इन्हें जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। अमेरिका की कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने कल सोमवार को जानकारी दी कि 11 से 15 मई के बीच एरिजोना के यूमा सेक्टर में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने 52 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से 36 लोग सेमी ट्रक चला रहे थे। इनमें से 30 भारत के थे, बाकी अन्य देशों के थे। बाफ्टा अवार्ड जीत चुकी मणिपुरी फिल्म बूंग ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। बताया जा रहा है कि बूंग फिल्म का नाम है बेस्ट डेब्यू फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी जो डायरेक्टर हैं उनको, बेस्ट चाइल्ड एक्टर गुगुन किप गेन के लिए ये अवार्ड जीते हैं। ये फिल्म फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाई गई थी और इसकी डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि ईरान के साथ 1 हफ्ते में समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता सीज फायर को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़ा होगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि दिन में एक छोटा सा मसला सामने आया था, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत सुलझा लिया। राष्ट्रपति के मुताबिक यह मसला ईरान की नाराजगी से जुड़ा था, जो लेबनान पर हो रहे इसराइली हमलों की वजह से था। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने IPL 2026 का फाइनल मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन इसके बाद टीम के बल्लेबाज टिम डेविड पर एक कार्रवाई हुई है। टीम को IPL 2027 के पहले मैच से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल बात यह हुई कि फाइनल मुकाबले में टिम डेविड ने गुजरात टाइटंस की पारी के 10वें ओवर के दौरान एम्पायर नितिन मेनन की तरफ एक आइस बैग फेंक दिया था। इसे आचार संहिता का लेवल 1 का उल्लंघन माना गया, खिलाफ वर्जी मानी गई कोड ऑफ कंडक्ट की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। एक खबर और, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर को लेकर के एक अहम समझौता हो गया है, ये खबर आ रही है। अमेरिका में लेबनान की एम्बेसी ने बताया है कि हिजबुल्ला की ओर से अमेरिकी प्रस्ताव को मानने की पुष्टि हो गई है और इसमें दोनों तरफ से हमले रोकने की बात मानी गई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: लौट आइए अब वापस संगीत की ओर। वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज Laika Gold Radio एंड Laika Radio.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica Gold.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: और साउथ हॉल ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई, मौसम खूबसूरत है, बड़ा हंसी मुहूर्त है, छुट्टियों पर जाइए, मौज मनाइए, मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स विद दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. South Hall Travel. Visit South Hall Travel or call 0208-574-8410.
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: London में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेम्पल ग्राउंड्स पर. फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेम्पल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932623852.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
12: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
12: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
12: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
13: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद instantly thanks to Jamin Foods.
14: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Sheera, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
13: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with Jamin Foods.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.

0: भाई किसी को मिला हो तो लौटा दो, बरसों से ढूंढ रहे हैं अपने खोए हुए दिल को ये साहब।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और अगर आप अपनों को पैसे भेजना चाहते हैं तो भाई रेट नोट कीजिए इनके। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.26 रुपीस, पाकिस्तानी 374.9, श्रीलंकन 446.19, बांग्लादेशी टकी 165.42 और अफगानी 84.54.
1: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. Manoranjan with Ravi Sharma. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of 108.13 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
0: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: राम कृष्ण हरी। यूके तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
5: India versus Pakistan and this is India's lineup.
6: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर। हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल। अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk। India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
5: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Search is changing.
10: Customers aren't just using Google anymore.
9: They're asking AI.
10: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
9: One business, one recommendation.
10: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
9: Will your business be the answer?
10: Or the one that got left behind?
9: The future of search has already started.
10: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
9: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me or you.
13: Southall Travel, Atto Protected.
14: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
15: BAPS મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
14: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
15: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
14: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
15: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
14: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
15: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
16: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
17: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
18: वेरी गुड मॉर्निंग. और लीजिए सुनिए मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये गीत जो हमें लेकर के चलेगा 11 बजे की खबरों तक. ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम है.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के इस दूसरे भाग में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहनों भाइयों, इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। वक्त हो गया है चिंतन का, थॉट फॉर द डे। आज का विचार, आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं साउथहॉल से पीयूष सिदानी साहब का भेजा आलेख। पीयूष सिदानी साहब लिखते हैं कि जिंदगी में भोग से ज्यादा त्याग में सुख होता है, यानी आप किसी चीजों का उपयोग करें अपने लिए, इसकी बजाय अगर आप उसी चीज को किसी जरूरतमंद के लिए त्याग करें तो वो भोग से ज्यादा सुख देता है। खुद इस्तेमाल से दूसरे को दिया जाने वाला सुख। देखिए, अगर आप कोई चीज भोजन ही ले लीजिए, आपने खाया, कोई अच्छा कपड़ा आपने पहना, उस समय के लिए सुख देगा जब तक आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो त्याग किया, किसी को दिया, वो तो देर तक आपको एक मन की संतुष्टि और आनंद पहुंचाता रहेगा। क्वालिटी फूड्स वाले हमारे रेगुलर लिसनर और कंट्रीब्यूटर भाई पीयूष शशिदानी भाई लिखते हैं कि आपने संत नामदेव का नाम तो सुना होगा, बड़े त्यागी बैरागी महात्मा थे और वो अपना भोजन खुद पकाया करते थे। भिक्षा में जो आटा, जो सब्जी, जो कुछ भी मिल जाता, 2 ईंटें जोड़ करके आग जलाते, अपने बर्तन साथ रखते थे, भोजन बनाते और फिर प्रसाद की तरह से भगवान को भोग लगा के फिर उसका उपभोग करते, खाते। एक बार 3 दिन तक उनका उपवास चला, फिर कहीं से भिक्षा में उनको आटा मिला। एक गृहिणी को, एक महिला को जब पता लगा कि महात्मा जी 3 दिन से उपवास पर हैं, तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप मेरा बनाया हुआ भोजन तो नहीं खाते, आप खुद बनाते हैं, इसलिए लीजिए। उन्होंने आटा भी, सब्जी भी, नमक मसाले सब चीजें दी महात्मा जी को। और भाई उनके घर के बाहर ही थोड़ी दूरी पर उन्होंने 2 ईंटें जोड़ करके चूल्हा बनाया, टेम्परेरी भोजन तैयार किया। बहुत जोरों से भूख लगी थी स्वामी जी को, लेकिन जैसे ही भोजन तैयार करके भगवान को अर्पण करके वो भोजन खाने वाले ही थे कि एक भूखा बच्चा एक टक भोजन की थाली की तरफ देख रहा था। महात्मा जी ने ग्रास तो थोड़ा पर खाया नहीं, बच्चे से पूछा, भूख लगी है? बच्चे ने गर्दन हिलाई, हाँ। अरे तू बोलते क्यों नहीं, ये लो खाओ, भोग लगाओ। महाराज जी को लगा कि बच्चा नहीं, स्वयं भगवान उसके पास भोग लगाने आए हैं। भोजन की थाली बच्चे की तरफ सरका दी। 3 दिन से उपवास चल रहा था महाराज जी का, लेकिन संत स्वभाव ही ऐसा होता है, बच्चे की आंखों में चमक आ गई। मैले कुचले हाथों से वो खाने लगा तो पहले उनके हाथ धुलवाए बच्चे के, और उसके बाद भोजन बड़े प्रेम से खिलाया। सारा भोजन बच्चा डकार गया। अब वो महिला जिसने आटा दिया था वो देख रही थी, घर से निकल के आई चमचमाती हुई, महाराज जी ये क्या किया?
1: चिंतन, चिंतन।
0: 3 दिन से आपका व्रत चल रहा था, उपवास कर रहे थे, मैंने आपके लिए दिया था ये भोजन सामग्री का सामान। संत मुस्कुराए और कहने लगे, देखो देवी, भोजन का काम है भूख मिटाना, इस पेट की मिटाई या उस पेट की, संतुष्टि मुझे ज्यादा मिली है उस बच्चे को खिलाकर। विश्वास रखो, खुद खाकर मुझे उतना सुख नहीं मिलना था जितना सुख उसे खिला के मुझे मिला है। महिला ने कहा, आप संतों की अटपटी बातें हमारी समझ में नहीं आती। मैं और सामान लाती हूँ, प्लीज अपने लिए भोजन बनाइए। महात्मा कहते हैं, मुझे तो तृप्ति हो गई। बच्चे ने भोजन जिस प्रेम से खाया, एक एक कोर, एक एक निवाला, जैसे भगवान ने भोग लगाया, बस मैं तो तृप्त हो गया। बहन भाइयों, यकीन मानिए, कभी आजमा के देखिए, भोग से ज्यादा त्याग में बहुत सुख होता है। किसी के आंसू पोंछ कर देखिए, आपको सुख मिलेगा। किसी भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके देखिए, मजबूर को, विवश को, बेसहारा को, बीमार को सहारा देके देखिए, आपको लगेगा कि आपको सहारा दिया गया है भगवान की ओर से।

0: थॉट फॉर द डे, आज का विचार, आज का चिंतन आप सुन रहे थे, जिसके लिए आलेख हमें साउथ हॉल से भिजवाया पीयूष सिदानी साहब ने। विपुल सिदानी, श्याम, क्रिस, उन सब की ओर से भाई पीयूष भाई ने बहुत पहले ये चिंतन भेजा था, आज हमने प्रोग्राम में शामिल किया, और आज धन्यवाद हम उनकी जगह विपुल भाई को और सबको जो क्वालिटी फूड्स का स्टाफ है जो सुन रहे हैं इस समय, भाई सबको सुनवा भी रहे हैं, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनमें क्रिस, श्याम और मार्टिन, रूपम, प्रियंका, शांति और अशोक भाई, आपका भी धन्यवाद, और सारे स्टाफ को जो कितने ही लोगों को वहाँ रेडियो ऑन रख करके प्रोग्राम सुनवाते हैं, चिंतन भिजवाते हैं, तो विपुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, पीयूष जी को प्रणाम। और आज का चिंतन याद दिला दूँ आपको बहनों भाइयों, रोज़ की तरह से 11 बजे की खबरों के बाद हमने शामिल किया गीत जो सुनवाया, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म अनाड़ी, 1959 की फिल्म थी। आज राज कपूर साहब को भी हम याद कर रहे हैं, आज इनकी पुण्यतिथि है। आज आचार्य श्रीराम शर्मा जी की भी पुण्यतिथि है, और आचार्य श्रीराम शर्मा एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं भाई, उनकी लिखी किताबों से हमने बहुत सारे चिंतन आपको सुनवाए हैं, आज का चिंतन भी मैंने देखा था उनकी किताब में था, पर सिदानी परिवार को जाता है क्रेडिट में उन्होंने भिजवाया। भाई भाइयों, ये फिर याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद आप मनोरंजन में सुनते हैं। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK याद दिला रहे हैं, सही समय है, अच्छा रेट है भाई, पैसे भिजवाइए, और जून के महीने में अगर आप ये काम करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी हैं। फॉर वन पाउंड इन योर पॉकेट यू कुड गेट मैक्सिमम 127.9 इंडियन रुपीज, 127 रुपए और 90 पैसे। साथ में याद दिला रहे हैं, सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: ये है लाइका गोल्ड।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: लाइका रेडियो नेटवर्क पर गोल्डन गीतों का खजाना लुटाया जा रहा है और अब आ रहा है लता जी की आवाज में ये गीत. Taken from the film Satyam Shivam Sundaram.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24-hour line.
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simzy before we left London.
2: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: Like a Goon. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.

लौट आइए संगीत की तरफ, पहेलियां बुझाते हैं, सवाल जवाब गीतों में, बातों में, संवादों में। और भाना भाइयों, जिस दौर में राज कपूर साहब सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, उसी जमाने में एक जुबली कुमार नाम से हीरो पर्दे पर आते थे, छा जाते थे। यह गीत उनकी याद दिलाएगा।

सचिन देव बर्मन के संगीत पर किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। एंड दिस सॉन्ग वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म प्रेम नगर, 1974 की फिल्म। और बहनों भाइयों, उस जमाने में राजेश खन्ना मेगा स्टार होते थे। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, चोटी के सितारे, अच्छी क्या कहते हैं भाई, कहानी, म्यूजिक कंपोजिशंस भी बहुत बढ़िया, गाना एक से बढ़कर एक। ये गीत हमें ले आया है 12 बजे की खबरों के नज़दीक, और वही खबरों के उस पार भी हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी।

0: बहुत ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, लेकिन भाई थोड़े से साजिंदों के साथ बढ़िया कंपोजिशन, ये इशारा करता है कि भाई ये धुन तो जरूर किसने बनाई होगी। ऑस्कर में भाई चर्चित रहे संगीतकार एआर रहमान। बॉम्बे फिल्म का गीत था ये, और इससे पहले प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी दौर का आगाज हमने किया था जिस गीत से, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, किशोरदा की आवाज में। भाई ये गीत सुनवाते हुए याद आ रहा है हमें कि आज मणिरत्नम साहब का जन्मदिन है, 1956 में जन्मे थे। कैसी कैसी फिल्में दी उन्होंने, रोजा, बॉम्बे, दिल से। मणिरत्नम, गोपाला रत्नम सुब्रमण्यम, दैट्स हिज नेम, और बड़े मशहूर भाई साउथ में तो है ही, नॉर्थ में भी उनकी फिल्में जो है काफ़ी कामयाब रही हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको बता दें कि मणिरत्नम के साथ साथ आज शत्रुपुत्री, मेरा मतलब हमारे मित्र पुत्री सोनाक्षी सिन्हा का भी जन्मदिन है, 1987 में जन्मी थी। मैंने बताया था एक बार उसकी एक फिल्म भाई हमने एक होटल में देखी, होटल का सिनेमा हॉल था, प्राइवेट सिनेमा हॉल, शत्रुघ्न सिन्हा और रवि शर्मा दो ही बैठे थे पूरे हॉल में, स्पेशल स्क्रीनिंग करवा के भाई बेटी की फिल्म देखी, अच्छा लगा। सोनाक्षी सिन्हा कितना बरसनी थई गई छे दीकरी, मने खबर न थी, माइंड योर बिजनेस, हर बात को जानना चाहते हैं, क्या मतलब है आपका। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू सोनाक्षी। भाई इसके अलावा आज इलियास राजा का भी जन्मदिन पड़ता है, 1943 में जन्मे थे, तमिल इंडस्ट्री के संगीतकार रहे हैं, 60,000 गीत, 1,000 फिल्में, बड़ा नाम है उनका भी, इलियास राजा। और आप भूले नहीं होंगे नीतीश भारद्वाज को, अरे वो जो महाभारत में श्री कृष्ण बन के आए थे, फिर उनके बाद उसके बाद उन्होंने मराठी फिल्म भी की, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की, और यहाँ लंदन में आके भी रहे, एक दो शो भी किए भाई, हमारे साथ बड़े सहयोगी रहे, मोनिशा पाटिल के साथ विवाह करके सेटल हो रहे थे, लेकिन आजकल फिर गुमनामी के अंधेरों में खो गए। सुना है कि किसी तीर्थ पर रहते एकदम सात्विक जीवन जी रहे हैं। नीतीश भारद्वाज, मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, 1963 में जन्मे थे। भाई आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, युग युग जिए। बॉम्बे फिल्म का गीत सुनवाते हुए मणिरत्नम की याद आई, और अब आगे बढ़ते हैं, याद दिला दूं आपको कि दोपहर बाद 1 बजे तक हमारा आपका साथ है। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई विश यू अ ब्रिलियंट आफ्टरनून।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. भाई आप कहते हैं कि पैसे भिजवाओ, भारत पैसे भिजवाने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि रेट भी अच्छा है और साथ में कुछ ऑफर्स भी अच्छी हैं। नोट कीजिए, टुडेज रेट एट दिस टाइम फॉर 1 pound दे आर गिविंग 127.9 rupees, 127.90 rupees। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, क्योंकि उससे पहले भाई जून से पहले पहले भेजेंगे तो क्या फ़ायदा है, कि यू कुड बी यू नो विनर ऑफ ए 75 pounds वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds, ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, विजिट SBIUK.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच, टीज एंड सीज अप्लाई। दिस इज लाइक अ गोल्ड।
2: बोले तुझे क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु आपके शो के ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ कोई पता चला? गुरु गुरु
3: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: राम कृष्ण हरी यूके तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
9: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
10: Atif Aslam live in the UK.
11: Dil diya galla karange na.
9: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
10: Book your tickets now at AXS.
9: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Experience the ultimate escape. 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
16: Halke fulke moments ko aur bhi khas banaye. Jamin snacks ke halke fulke puff bites ke saath.
17: Rice kaun se bane light aur quality mein best? Jamin puff bites. Jo hai barbecue, lemon chili, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
16: जयमीन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
18: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहनों भाइयों, आप जानना चाहते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम क्या है? वेल, नाम सुनकर तो नहीं पहचान पाएंगे आप, हाँ उनका जो टाइटल है, जिस नाम से वो लिखते रहे हैं वो बताऊंगा तो पहचान पाएंगे। नाम तो है उनका श्याम लाल बाबू राय, कल बताया था मैंने। लेकिन साहब, जिस नाम से उन्होंने ख्याति प्राप्त की, गीत लिखे, वो नाम है उनका इंदीवर। इंदीवर 1 जनवरी 1924 में जन्मे थे श्यामलाल। झांसी में, वही शहर जो झांसी की रानी वाला। 27 फरवरी 1997 में उनका निधन हुआ मुंबई में। लेकिन पीछे छोड़ गए हैं भाई बहुत सारे गीत, 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए हजारों गीत लिखे उन्होंने, और आज लोग बड़े चाव से सुनते हैं उन गीतों को। उनमें से एक ये भी है।

0: प्यार तो हमारा भी अमर रहेगा भाई, याद करेगा जहान। एक लंबी दास्तां है हमारे आपकी रिश्तों की, और भाई वो आपके संदेशों में झलकती है। वेल निर्मला जी, आपका संदेश मिल गया है, आपको गीत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और कांडू जी, आपका संदेश आया है, आपको भी गीत बहुत भाया, थैंक यू वेरी मच। इट इज इलियास राजा, नॉट इलियास, भाई क्या फर्क रह गया मेरे समझ में नहीं आया। इलायास या प्रोनाउंसिएशन के लिए, क्योंकि साउथ के हैं वो संगीतकार, कहते हैं इट इज इलायास राजा, नॉट इलियास राजा। हिज फैंस मे गेट अपसेट, वाई भाई? क्योंकि अंग्रेज सारे ही हमारे नाम बिगाड़ के बोलते हैं। देखो जिस भाषा से हम परिचित नहीं हैं, अगर आपने नाम का प्रोनाउंसिएशन लिखा है बोल के बताएं तो पता लगता है, लेकिन आपने स्पेलिंग इस तरह से लिखी है कि वो इलियास नहीं इलायास है। खैर भाई उसका मतलब भी बता दें तो और अच्छा लगेगा, थैंक यू वेरी मच। हिज बर्थडे इज टुमारो ऑन 3rd of June, ही सेज नॉट टुडे। भाई हम क्या करते हैं कि हम ढूंढते हैं किताबों में या जहां भी से हमें मिल जाए जानकारी, तो हम एडवांस में कह देते हैं उन्हें, यू डोंट माइंड करेक्टिंग, क्या पता भाई बाप आप करेक्ट कर रहे हैं कि करप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कल है क्योंकि, तो हम एडवांस में कह देते हैं, आज है तो कह ही दिया है, बाकी हमारे बाली भाई से हम कन्फर्म करेंगे क्योंकि फिल्मी दुनिया के वो ज़्यादा नज़दीक हैं। और आपके अनुसार इलायास इलाया राजा, नॉट इलियास, भाई आपका जो लिखा हुआ है उसमें एस उड़ा दिया है आपने, तो ठीक है जो भी है, पर वो हमारे जो साथी वो इसी नाम से बुलाते रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं अगर गलत है तो। फारूक मोहम्मद, विजय सटन में, और निर्मला जी के अलावा वत्सला जी, आपको भी गीत संगीत और चिंतन पसंद आया। मानसी, थैंक यू। हंसा वोरा, नरेंद्र पांचाल और रानी स्लाव में, और मधु आंटी जी, जगदीश, अनिल सोनी वियाना में, जसू, ललित छत्रिशा, ललित भाई क्षमा चाहूँगा अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो आपके सरनेम का, ललित छत्रिशा यही लिखा है, कहती है कि आज का चिंतन और उसके साथ का गीत आपको बहुत पसंद आया। फतेह पटेल, नरेन, थैंक यू वेरी मच। नरेन लगता है आप पहली बार संदेश भेज रहे हैं या पहले भेजा होगा तो देर बाद भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपको भी अच्छा लगा आज का चिंतन। और कंचन जी, थैंक यू। सत्यनारायण सैनी भारत से संदेश भेज रहे हैं। रंजन और ये अर्जुन जी, रागिनी, महेंद्र, राजीव पटेल शर्मा मेडस्टोन से, और पम्मी सिंह, हरविंदर जी आप चिंतन की जिज्ञासु हैं, सुनीता शर्मा, अरुणा, भूपेंद्र पटेल, नीला चौधरी जी, महेंद्र बजारिया और जैस्मीन, थैंक यू वेरी मच जैस्मीन। भारत गंगाराम, जहीर खान कराची से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे नाम बाकी हैं भाई, एक हमारे देशराज बैसन साहब हैं वो चिंतन के लिए कहानी भेज रहे हैं, कभी फिर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर संदेश को हम सर आँखों से लगाते हैं। और भाई अगर नाम छूट जाए किसी का तो उनसे माफ़ी भी चाहते हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आपके गीतों में मौसम का इशारा होना चाहिए। भाई पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी, अब राहत मिली है, ऐसे मौसम का स्वागत है।

0: आया सावन झूम के भाई, बाहर देखा जा सकता है सावन झूम के आया हुआ है आज भाई। अभी भी वो अपने कंडू साहब या कंदू, माफी चाहूंगा, जहाँ इलायराजा का नाम मैंने अगर गलत बोला है तो वो तो ठीक है, लेकिन आपका नाम ठीक है कि नहीं ये भी बता देना कि मैं KANDU कैंडू बोलूं या कंदू बोलूं। साउथ इंडियन नामों से बहुत करीब से हम परिचित नहीं हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। और ये बात सही है कि उनका जन्मदिन 3 जून को है भाई, कल हमने एडवांस में आज उनको हैप्पी बर्थडे कह दिया। लेकिन एक बात तो बताना भूल गए कि इलायराजा जो हैं वो पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं भारत सरकार की ओर से, और आज वो हो गए हैं, मतलब कल हो जाएंगे 82 बरस के, और भारत क्योंकि कुछ घंटे आगे है तो भाई हम आज भी उन्हें हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। तो और भी किसी का जन्मदिन अगर आज है तो मेरी मेरी
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai
4: Like a Gold.
3: Like a Gold.
5: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: एक बात याद दिला दी आपको भाई के लेजेंडरी गायक कलाकार हरिहरन आ रहे हैं यूके सोल इंडिया कॉन्सर्ट लेकर के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 4 जुलाई शनिवार को परफॉर्म करेंगे। southbankcentral.co.uk पर टिकट्स अवेलेबल हैं।

0: गलियों में क्यों पुकारते हो भाई, दिल में झांक के देखो। साजन वहां बैठा है। प्रतिभा जी थैंक यू वेरी मच, आपका संदेश मिला हितेश भारत से, हमें लगातार याद करते हैं नलिनी हैरो में, थैंक यू वेरी मच। भाई सभी श्रोताओं को धन्यवाद दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, ये गीत आप तक पहुंचा रहे थे
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Manoranjan with Ravi Sharma. Like a gold. Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: उनके रेट्स नोट कीजिए भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.35 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 375 एग्जैक्टली, श्रीलंकन रुपए 447.56, बांग्लादेशी टका 165.37 एंड अफगानी 84.44।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download Lemfi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is sold at the rate of... क्या भाव है? कुछ ऊपर नीचे हुआ? नहीं, 108.13 पाउंड्स पर ग्राम, 108 पाउंड और 13 पेंस का एक ग्राम।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protect.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
0: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
0: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
6: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
5: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
6: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
5: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
6: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
5: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
6: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected. Manoranjan with Ravi Sharma.
10: और लीजिए बहनों भाई, अब कार्यक्रम को समेटते हैं. जाते जाते एक बार फिर से फिल्म इतिहास में, इंडियन फिल्मी इंडस्ट्री में भाई उस महान शोमैन को याद करें जो क्या कहते हैं भारतीय सिनेमा के किस रूप में कहें आपको, सबसे बड़े शोमैन तो माने ही जाते थे, लेकिन उसे भारतीय सिनेमा का उन्हें चार्ली चैपलिन भी कहा जाता था. और राज कपूर साहब की आज पुण्यतिथि है. सो राज कपूर साहब कहते हैं संघर्ष तो उन्होंने बहुत बचपन से ही शुरू कर दिया था. हालांकि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर साहब पहले से फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन राज कपूर को फिर भी स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि पिता ने कहा कि मैं कोई मदद नहीं करूंगा, संघर्ष करके खुद आगे बढ़ो. केदार शर्मा को सौंप दिया था, उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर थे भाई. और कहते हैं केदार शर्मा ने एक बार तो राज कपूर के गाल पर थप्पड़ भी जड़ दिया था. भाई ऐसे ही सीखते हैं, गिरते पड़ते उठ संभलते. तो राज कपूर साहब ने जो एक फिल्म बनाई थी आग, जब फिल्म बना रहे थे सब ने उनका मजाक उड़ाया, कहने लगे कि भाई अगर वो आग फिल्म बना रहे हैं तो कह दो उन्हें कि एक सिनेमा हॉल भी बनवा लें ताकि आग लगे तो उन्हीं के हॉल में लगे. उड़ाओ मजाक उड़ाओ. उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ये कलाकार दुनिया भर में मशहूर होगा, खासकर रशिया में भाई, और भी कई देशों में उनकी फिल्में सुपरहिट रही, भारत में तो चली ही. राज कपूर साहब को मैं बहुत क्या कहते हैं कि फॉलो कर रहा था उस समय से जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा था. राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट सबको अवार्ड दे रहे थे भाई, और दूसरे जो अवार्ड्स थे उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई, तो राज कपूर अपनी कुर्सी से नहीं उठे. उनके हाथ कांप रहे थे, नाखून नीले पड़ रहे थे. लोगों ने सोचा ये क्या हुआ, नाम उनका दोबारा से अनाउंस हुआ, लेकिन वो अवार्ड लेने के लिए प्रेसिडेंट की ओर नहीं बढ़े. छोटा सा मतलब एक दो स्टेप ही ऊपर चढ़ना था मंच पर, राज कपूर नहीं ले तो स्वयं प्रेसिडेंट जो है दो कदम नीचे उतर के उनके पास आए, पर तब तक जो है राज कपूर साहब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कमज़ोर हो गए, उठ पाने में असमर्थ हैं। अवार्ड तो उन्हें मिला, लेकिन वहाँ से सीधे उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, इलाज चला। लेकिन साहब 2 जून 1988 में उसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में राज कपूर साहब ने अंतिम सांस ली। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे वो भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। लगा नहीं कि राज कपूर चले गए, राज कपूर हैं, राज कपूर रहेंगे। कपूर परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने जाके मुलाकात की। कलाकार कहाँ जाते हैं, निवास करते हैं दिलों में। आज भी सिनेमा हॉल्स में हमारे यहाँ लगी थी उनकी एक फिल्म हमारी यूनिवर्सिटी में, मेरा नाम जोकर। अरे साहब बैठने को जगह नहीं मिली, तो जिसे जहाँ बैठा सके, हमारी थिएटर की काफ़ी कैपेसिटी है, ऑडिटोरियम है, हम लोग तो वहाँ नाटक ड्रामे मोनो एक्टिंग्स म्यूजिक के कॉन्सर्ट करते हैं, पर वहाँ राज कपूर साहब की ये फिल्म दोबारा आई थी, पहली बार फ्लॉप हो गई थी, दोबारा लोगों ने सिनेमा हॉल में देखी। उस महान शोमैन को अंतिम प्रणाम करते हुए बहनों भाइयों मैं इजाज़त लेता हूँ। बाली भाई एंटर कर रहे हैं, वो तो मुझसे भी ज़्यादा बहुत सारी सामग्री जुटा कर लाएंगे, उनका इंतज़ार कीजिए। रवि शर्मा को इजाजत दीजिए, हैव ए सुपर्ब डे, बाय बाय।
11: ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा।
12: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
13: The top stories this hour. Prosecutors have revealed the former chief executive of the SNP used party funds to buy a motorhome, which he only ever drove 4 miles, as well as luxury goods and a robot lawnmower. Peter Murrell appeared in the High Court in Edinburgh this morning after pleading guilty to embezzling over £400,000. The Sunday Times' John Boothman says it was a sophisticated operation.
14: We had created false invoices. Some of the original invoices were found in his house, creating a trail to disguise his crime. He passed off that £3,200 robot lawnmower as legal fees.
13: He'll be sentenced later this month. Investigators have confirmed they'll meet the family of murder victim Henry Nowak as a watchdog looks into his treatment by police. The student was arrested as he lay dying after being stabbed in Southampton in December. Reform leader Nigel Farage says people should respond with pure cold rage over the incident, claiming it's anti-white prejudice.
15: This is wrong. All the values and standards of living in a free country where everybody is judged equally before the law have been trashed and thrown away.
13: Vikram Digwa was jailed for life yesterday. Officials in Ukraine say at least 18 people have died after a series of overnight attacks by Russia. Dozens of people are injured and authorities fear people are trapped in the rubble of collapsed apartment buildings. There's a warning of widespread travel disruption during strikes by drivers on the London Underground. Union members are walking out today and on Thursday. The Bank of England says mortgage approvals reached their highest level for more than a year in April. Just under 66,000 house purchases were approved. And Scotland legend Sir Kenny Dalglish has confirmed he's undergoing treatment for cancer. He says he wanted to keep the news private, but he accidentally posted about it on social media. Dalglish's former club Liverpool say they're sending him support and love. From Sky News, I'm Imani Rana.
16: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
17: From the case files of Miss Maureen 118212, the case of the replacement rodent.
18: A woman called asking for the number of a pet shop. She needed a new hamster before her son returned from school. I didn't ask what happened to the original hamster. Best not to know some things.
19: Maureen! 118212!
17: For directory inquiries, call Maureen on 118212. Calls cost £2.50 per call plus 75p a minute with a minimum 1 minute charge plus your phone company's access charge.
20: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
21: And a good afternoon to you. Looking at the weather, it's 19 Celsius in London and 18 Celsius in the Midlands. Now, in London, it's the weather is a bit different than the Midlands. This afternoon, any lingering rain will clear, allowing for some sunny spells as scattered showers develop, some heavy and thundery. And in the Midlands, any lingering rain will clear, and then it's going to be some heavy and thundery showers.
20: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.

0: थैंक यू रवि शर्मा जी, द अल्टीमेट शोमैन। पर्दा गिरे या उठे, परवाह नहीं होती उस फनकार को जो सदियों तक अपनी अदाओं से जिंदा रखता है बाजार को। राज कपूर।
1: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: ट्रेवल हब,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: लाइका, स्प्रिंग इनटू द सनशाइन ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Yes, the background music is also suitable to today's subject. उन्होंने कहा छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम गमे दुनिया को हंसा कर झेल लेती है नजर उनकी गमे दुनिया को हंसा कर झेल लेती है नजर उनकी अजीब एक फलसफा है मस्तानी रहबर है उनकी ना कोई रास्ता अपना ना कोई हम सफर अपना मगर हर दिल को अपना कर गुजरती है नजर उनकी। राज कपूर एक बड़ा नाम द शोमैन। अगर किसी को हम नाम जिक्र करें राज कपूर आई गेट कमेंट्स लाइक द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा या तो कहेंगे चार्ली चैपलिन ऑफ इंडिया या तो कहेंगे द ग्रेटेस्ट एक्टर या तो कहेंगे द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर। किसी ने इस इंसान की बुराई नहीं की। हाँ एक जमाना था ही हैज अप्स एंड डाउन्स ही हैड अप्स एंड डाउन्स फ्लॉप फिल्में भी थी हिट फिल्में भी थी। लोग कहते थे अब उसका टाइम आ गया है इट इज़ गुड बाय टू राज कपूर ऐसी ऐसी भी बातें हुई थी। लेकिन आज की तारीख में ऑन द 38th डेथ एनिवर्सरी ऑफ राज कपूर सब सलाम करते हैं सब झुककर बात करते हैं। 14 दिसंबर 1924 पेशावर एंड ही पास्ड अवे ऑन 2 जून 1988 इन न्यू दिल्ली। एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर विद म्यूजिकल सेंस एक्टिव फ्रॉम 1935 टू 1988। अब सोचो 63 साल की उम्र जिसमें से 53 साल इन्होंने इसी में गुजार दिए। इनकी तो पूरी लाइफ 10 साल की उम्र से इन द 53 ईयर्स ही गॉट 3 नेशनल अवार्ड्स 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स अ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। जब इनको पद्म भूषण मिला इन 1971 इनके पापा जी पृथ्वीराज कपूर जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था दैट वाज इन 1971। 16 साल के बाद जब राज कपूर जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला 1987 में अ ईयर बिफोर हिज डेथ ही आल्सो गॉट इट इट वाज वन ईयर बिफोर हिज डेथ। नाउ मैं अगर इनकी फैमिली के बारे में बताना चाहूँ या तो इनके बचपन की बातें मैं करना चाहूँ तो आप कहेंगे कोई नई बात नहीं कर रहे सबको ज़बानी मालूम है। सो वाई डोंट वी फोकस ऑन द सॉन्ग्स विल फोकस ऑन द सॉन्ग्स। सेकेंड आवर में जब लोगों को मालूम था कि 80% या 90% इनकी फिल्मों का म्यूज़िक शंकर जयकिशन ने ही किया था शंकर जयकिशन वर द रेगुलर्स। लेकिन मैं आपको कुछ गाने सुनाऊंगा ऑफ अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने संगीत दिया राज कपूर जी के लिए राइटर्स भी अलग अलग और म्यूजिक डायरेक्टर के अलावा आवाज़ें भी अलग अलग क्योंकि मुकेश वॉज द वॉइस ऑफ राज कपूर। लेकिन मैं आपको गाने सुनाऊंगा इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब मुकेश जी तो थे ही देन रफ़ी साहब के साथ तलत महमूद ऐसे ऐसे कुछ लोग लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स वर बाय मुकेश जी बट विद अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स देन शंकर जयकिशन दैट इज़ इन द सेकेंड आवर। थोड़ा सा आपको मैं नॉस्टैल्जिक मूड में ले जाऊंगा एंड वेरी सोबर सॉन्ग्स। आर यू रेडी फॉर मी आई एम रेडी फॉर यू। लेट्स रिमेंबर द ग्रेट मैन राज कपूर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.9 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. Before एंड ऑफ जून, अब तो शुरुआत है जून की, सो यू गॉट अ लॉट ऑफ डेज टू डू दिस बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन ए 75 pound वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds. ऑल्सो ए 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Lyco Radio Network.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
10: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
9: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
10: गारंटेड.
9: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
10: फोन 0208574 8410.
9: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: फिल्म है आह 1953 की.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ji haan, that was produced by Raj Kapoor and film Aah thi. Raj Kapoor, Nargis, Pran, who doesn't know this movie? We've all seen it. And beautifully scored by none other than Shankar Jaikishan. Shankar Jaikishan ji ne most of the films, jitni bhi inki thi filmein, usme sangeet inhone diya tha. Shailendra ne lyrics likhi thi is gaane ke liye. And aage jaate hue main itna hi kahunga ki inki career ke bare mein agar 10 saal ki umr mein as a child inqilab film mein inhone एक छोटा सा चाइल्ड रोल किया था एंड देन 23 साल की उम्र में दैट वाज 13 इयर्स लेटर एज अ लीड इन नील कमल दैट वाज द डेब्यू ऑफ मधुबाला जी हाँ मधुबाला के साथ दो तीन फिल्में और भी की थी इन्होंने एंड 24 साल की एक साल के बाद एस्टैब्लिश्ड आर के फिल्म्स जिन्होंने कितनी सारी फिल्में प्रोड्यूस की 25 साल की उम्र में इन्होंने एक्टिंग की थी अंदाज फिल्म में 1949 विद दिलीप कुमार एंड नरगिस मेजर अचीवमेंट दैट वाज अगर चार्ली चैपलिन लोग बोलते थे इनको दोज वर द फिल्म्स आवारा 1951 की आह 1953 श्री 420 1955 जागते रहो 1956 इसमें चार्ली चैपलिन का पूरा टच है इनका फिर 1960 में जब 36 साल की उम्र थी इनकी जिस देश में गंगा बहती है वॉज अ सुपर डुपर हिट इट वॉज डायरेक्टेड बाय हिज लॉन्ग टाइम सिनेमाटोग्राफर राधु कर्माकर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फिल्म एंड देन ही वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर फॉर फिल्म आग विद नरगिस 1948 में जब वो 24 साल के थे एंड एक क्या था दूसरा विद नरगिस कामिनी कौशल जी हाँ कामिनी कौशल भी थी दैट्स राइट एंड गाना भी उसमें एक बड़ा खूबसूरत गाना है कामिनी कौशल जी के साथ अमंगस्ट मैनी फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम टू फिल्म्स वेंट टू कैन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आवारा थी बूट पॉलिश थी 1951 की आवारा एंड बूट पॉलिश 1954 की एंड हिज परफॉर्मेंस इन आवारा हैज़ बीन एंटर्ड इनटू द टॉप 10 ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा आवारा 1951 फिर इनकी प्रोडक्शन जो थी उसमें तो वो प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर ही रहे थे लेकिन ही वॉज सो पॉपुलर एंड सच अ ग्रेट एक्टर सच अ शोमैन दैट आउटसाइड हिज होम प्रोडक्शन ही ऑल्सो एक्टेड इन अदर प्रोडक्शंस लाइक दास्तान फिल्म थी फिर अनहोनी चोरी चोरी चोरी चोरी पीपल ऑलवेज लुक एट द फिल्म एंड थिंक के राज कपूर की फिल्म है लेकिन चोरी चोरी वॉज नॉट हिज फिल्म And then Anadi, that was Hrishikesh Mukherjee, who was the director of Anadi. And then Do Ustad, Chhaliya, that was Manmohan Desai, Chhaliya, jisme Kalyanji Anandji ne sangeet diya tha. Dil Hi To Hai, Dulha Dulhan, Around the World, Sapno Ka Saudagar, aisi aisi filmon mein inhone kirdaar nibhaye the which were out of his production. हम याद कर रहे हैं नन अदर देन राज कपूर सृष्टिनाथ रणबीर राज कपूर
1: कूल म्यूजिक फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन लाइक अ गोल्ड To Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons from Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
4: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: विजिट travelhubworld.com
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: London, volume padhari do. A 20 June Bollywood ni powerful voice Bhumi Trivedi. Aavi rahi che London.
10: Ram chahe Leela chahe Leela chahe.
9: Dhamakedar musical night party ready thai jao.
10: Udi udi
9: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Tickets book karo srevents.com par. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner Laika Radio.
11: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
12: Lights on, shutters up, staff ready.
11: But today's customers don't start on the high street.
12: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
11: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
12: They walk into your competitors.
11: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
12: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
14: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
13: So where do we find something like that now?
14: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
15: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
16: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: is currently trading at £108.06 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons from Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious, everything for everyone.
3: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: Yes, Chori Chori, out of his production.
1: Feel good classics all day. This is Like a Gold.
0: इस गाने में लता जी ने जो हाई पिच सिंगिंग किया था, राज कपूर जी वॉज सो हैप्पी. ही गॉट हर टू सिंग सो मैनी मोर सॉन्ग्स. इनके साथ प्यार भी था, झगड़ा भी था. जब संगम फिल्म का जो गाना था जिसमें मैं का करूँ राम बूढ़ा मिल गया, लता जी ने कहा कि थोड़ा वल्गर गाना है लेकिन शूटिंग कैसे होगी. उन्होंने कहा शूटिंग में कुछ वल्गैरिटी नहीं होगी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा जैसे वैजयंती माला ने टाइट स्लैक्स पहने थे, उस जमाने में इट यूज टू बी वल्गर.

जी हाँ, आशीष जी ने कहा, आई रियली एडमायर द डिटेल्स यू हैव बीन प्रोवाइडिंग फॉर राज कपूर. द फिल्म्स यू आर रिमाइंडिंग अस आर सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. लॉन्ग मे कंटिन्यू द एफर्ट्स यू पुट इन टू एंटरटेन अस विद द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज. सैल्यूट टू यू सर. थैंक यू आशीष देसाई. आई सैल्यूट यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. यू मेक अस, यू ब्रेक अस.

0: म्यूजिक डायरेक्टर राम गांगुली. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट फिल्म बरसात में राज कपूर टुक शंकर जयकिशन एज म्यूजिक डायरेक्टर्स. वो इनके साथ काम करते थे राम गांगुली के साथ, लेकिन बाद में कुछ अनबन हो गई एंड द बिजनेस वेंट टू शंकर जयकिशन. बट क्या संगीत दिया था नहीं ये फिल्म आग में 1948. अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स देन शंकर जयकिशन, सुनिए.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is like a gold.
0: And I got news for you. The legendary Hariharan. Legendary Hariharan returns to the UK for Soul India at Royal Festival Hall, London, Saturday, 4th July. Tickets at southbankcentre.co.uk. Exclusive radio partner Laika Radio Network. And the show is going to be hosted by Beena Mistry. And now we have Atif Aslam, who returns to the UK for a special one-off concert at the O2 London on Sunday, 14th of June. Tickets are available from AXS. Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: मोहम्मद रफी और सुरैया, फिल्म है दास्तान. संगीत है नौशाद का, गाना लिखा है शकील बदायूनी ने.

0: है उसने।
1: हमने कितनी बार ये गाना सुना लेकिन सोचा नहीं होगा कि राज कपूर जी पे पिक्चराइज हुआ था। फिल्म है नजराना 1961 की। वी आर रिमेम्बरिंग राज कपूर ऑन हिज 38th डेथ एनिवर्सरी। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट आपकी खिदमत में ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स।
2: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
1: Yes, make this summer memorable with South Hall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that include flights, hotels and atoll protection. Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit South Hall Travel or call on 0208-574-8410.
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Like a extra podcast update.
1: And the podcast update, podcast episode 18. The title is Menopause. Hosted by Ruby Raza. Now, are hot flushes still a hush-hush in our community? I think yes. As South Asians, do we downplay the changes in women? I think yes. But let's hear the debate with Ruby Raza, podcast episode 18. Like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Extra is here.
3: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।

0: फिल्म है आशियाना 1952 की, संगीत है मदन मोहन का, कांट बिलीव राज कपूर के पे पिक्चराइज हुआ था। एंड ये संगीत है रोशन का, फिल्म दिल ही तो दिल है।
1: मोहब्बत कर बैठा नादा था बेचारा, दिल ही तो है।
0: I'm sorry, it makes it sound like Sandy Shah's vintage, but the subject is such.

0: दुनिया के गमों को हंसाकर भुला दिया जिसने, दुनिया के गमों को हंसाकर भुला दिया जिसने, जिंदगी को जीने का एक नया फलसफा सिखा दिया उसने। राज कपूर, फिल्म है जागते रहो, संगीत है सलील चौधरी का। वी आर रिमेम्बरिंग राज कपूर जी ऑन हिज 38th डेथ एनिवर्सरी। यस द शोमैन।
1: रंगी को नारंगी कहें

0: our basmati rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
2: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपनी टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून. बी देयर.
1: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज. देयर इज अ चांस.
3: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
4: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
3: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स.
4: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
5: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
0: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस. अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल journey.
5: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
5: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
7: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Our artist of the week, Indiva, he got recognition from this particular song. Like a
1: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
2: Feel good hits in the sun with Like a Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: featuring special guests actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group. 12th June at the Willows from 1 PM till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989972879.
1: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला. येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ. 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
2: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. दैट्स 02089072444.
3: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
4: SonaTours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia. Departures every month September to December. First 10 bookings get 100 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
5: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Sandy Shah on Gold Drive.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
7: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: ड्राइव विद सैंडी शाह ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: रामकृष्ण हरि यूके फील द पावर ऑफ महाराष्ट्र दिस 6th जून एक्सपीरियंस वाद्य महोत्सव 2026 लाइव एट रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
2: Gold Drive with Sandy Shah.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? अरे होंगे ही, ऐसी धमाकेदार शुरुआत हमने की है। पहले तो एक तो आते से ढोल बजा दिया, फिर ढोल बजने लगा, उसके बाद में उनका मुशायरा बीच में शुरू हो गया, है ना। मैं बरसों बाद लौटा हूँ, वो सारा जो है ना, दैट इज़ मुशायरा जैसे लगता है वो, है ना। उसके बाद में किशोर कुमार की आवाज़ में मशाल फिल्म से ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं, कितने किस्से सुनाने हैं, कहानी सुनानी है। ऐसा करती हूँ आज ये गाना ना मैं खुद के लिए डेडिकेट कर दी हूँ। देखो मैंने कल आपके लिए बहुत अच्छा गाना डेडिकेट किया था ना, है ना, आज ही मेरे लिए। क्यों? क्योंकि किससे कहानियाँ सुनाने ही तो यहाँ पे आ जाती हूँ, और आप लोगों का इतना प्यार, दुलार, लाड़, तारीफ, मज़ा आ जाता है। आ गए सब? हो गया ट्यूसडे का दिन, ऑफिस ख़त्म? अभी भी ऑफिस का काम कर रहे हो? कोई ना, अभी आ गई ना अश्विनी, आपको देखो इतने बढ़िया बढ़िया गीत सुनाइए कि आप कहेंगे उफ क्या बात है। अच्छा, हमेशा की तरह अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है। साइलेंट लिसनर्स, दीदी आप, भाई साहब आप, ना शर्माइए, हाई हेलो करके हमें बताइए कि आप हमें सुन रहे हैं। मुझे कितनी बार ऐसे मैसेजेस आते हैं बाद में, जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, अरे अश्विनी हम तेरा शो सुन रहे थे, क्या बात है यार, कितना मज़ा है। मैंने कहा यार यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी कर दिया करो ना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दिया करो। तो अटेंडेंस लगा दीजिए, सारे के सारे मेरे जो ये धुरंधर हैं आ गए हैं, है ना, दिन भर के बाद में थके आ रहे, अभी फुल ऑन आराम से मज़ा मस्ती करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो आज कौन सा किस्सा कहानी सुनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये वो गाना ना खुद के लिए डेडिकेट किया। क्या किस्सा कहानी है? ओके, नाउ दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटिफुल, और ना जाने क्यों मुझे एक किस्सा याद आया। सो आई एम इन टू मीडिया फ्रॉम द एज ऑफ 18 एंड आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल अकोला, महाराष्ट्र से। सो आई यूज़ टू वर्क फॉर अ टेलीविजन लोकली वहाँ पे, तो मैं न्यूज़ रीडिंग भी करती थी, एंकरिंग भी करती थी, बाहर जाके इंटरव्यूज लेती थी। अब 18 इज़ लाइक बहुत ऐसी कच्ची एज होती ना, जब आप बड़े सपने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। सो आई वेंट फॉर किसी एक बहुत भीड़ भड़कके वाली जगह थी, तो वहाँ पे सभी ने अपनी अपनी चप्पल जूते जो है बाहर निकाले थे, एंड देन वी वेंट फॉर इंटरव्यू अंदर। मैं जब बाहर आई तो मेरी जो बेलीज थी, जो मैंने पहन रखे थे शूज़, वो गायब थे। अब मुझे आया रोना, एक तो हमारे अकोला की धूप इतनी ज़बरदस्त होती है, मैंने कहा हे भगवान, और मेरे साथ में जो कैमरा पकड़े हुए भैया थे, मैं उनके पास रोने गया, मैंने भैया मेरे तो शूज़ चले गए, मैं क्या करूँगी। तो वहाँ से एक फ़कीर बाबा जा रहे थे, और उस टाइम पे उन्होंने उनके हाथ में ना बहुत सारे पीकॉक के फेदर्स होते ना, दैट बंच ऑफ, तो उन्होंने मेरे सिर पे दो तीन बारी ऐसे वो ही जस्ट टच्ड ऑन माय हेड एंड सेड कि तू सबको तेरी आवाज़ सुनाएगी। एंड आई वाज लाइक 18 में क्या समझ में आता है आवाज़ सुनाएगी। नाउ दैट आई थॉट, आप सबसे मैं अपनी आवाज़ के द्वारा ही तो कनेक्ट कर रही हूँ। तो ऐसा ही कोई किस्सा कहानी जो आप कि जब आप छोटे थे और आपके लिए किसी ने कहा था और वो बात सच हुई। चलो जो भी किस्से कहानियां हैं, जो भी है, खुल के बताओ, है ना, बिकॉज दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत लाइंड अप है, और पूरे पूरे ऑनेस्टली सच्ची सच्ची बताना, ठीक है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 127 Indian rupees and 90 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: सीटीवी एंड सी5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में। देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंट इन अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
5: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, वेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन, एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स। प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन। वेस्टर्न यूनियन इज ऑल्सो अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेस, यूरो चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस। डाउनलोड आवर ऐप टुडे और विजिट westernunion.com। दिस ईद सेंड मोर देन मनी, सेंड जॉय। वेस्टर्न यूनियन मेक्स मनी फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज।
6: रामकृष्ण हरि, UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
12: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
4: लाइका गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है।
3: इट्स 27 मिनट्स पास्ट 7, 2nd ऑफ जून ट्यूसडे। आज किसी का बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा, किसी को नई जॉब मिली होगी, किसी को जॉब से रिलेटेड कुछ नया चीज़ पता चला होगा। जो भी है, ट्यूसडे जो है वो टेरिफिक ट्यूसडे है हम सब के लिए। और टेरिफिक ट्यूसडे जो होता है वो होता है सेकेंड आवर में। फर्स्ट आवर में होता है यादों की बारात। तो यादों की बारात की तरफ धीरे धीरे आप और हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिस इज समथिंग, अगर आप में से कोई इस चीज़ से या इस इंसिडेंट या इस न्यूज़ से इंस्पायर हो जाए तो बता के रखिएगा, काफ़ी लोग आ जाएंगे। तो एक वायरल स्टोरी में एक आदमी जो है जिन्होंने बहुत सारी सेविंग्स की थी पूरी लाइफ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई मेरी जितनी भी कमाई है तो मेरी ऐसी फाइनल विश है कि वो सारी कमाई जो है वो लोगों में बांटी जाए। अब बांटी जाए मतलब कैसे होता है कि कोई लोग जो है किसी मतलब सोशल वर्कर को बुला के कुछ करेंगे या किसी एनजीओ मतलब एनजीओ खोल देंगे या कहीं जाके कुछ तो पैसे बांटेंगे। लेकिन ना ना ना ना, ये भाई साहब जो है इन्होंने अलग से ही कुछ अपना काम किया है। ये बैठे एक चॉपर में और उसमें बैठ के इन्होंने जो कैश इकट्ठा की थी वो चॉपर में से नीचे ज़मीन पर उड़ाई। अब कितने लोगों ने ली, कितने लोगों ने नहीं ली वो पता नहीं, लेकिन ये भी एक तरीका उन्होंने सोचा कि मेरी आँखों के सामने मेरी दौलत जो है मैं दुनिया में बांटूंगा। और वो उन्होंने बांटी भी, और कहां से, तो चॉपर में बैठ के।
0: ये है लाइका गोल्ड, द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, लता मंगेशकर की आवाज में बरसात, फिल्म से सुनाए आप सभी को एक गीत। 1949 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अब बरसात तक दिनातिन करते हुए हमारे यहाँ पे जो आज सुबह से बीच में तांडव होता है, फिर कभी ब्यूटीफुल और प्यारी सी परफॉर्मेंस होती है, और फिर एकदम धड़ धड़ धड़ बारिश जो आती है। सो हरप्रीत मुझे पूछ रही कि अश्विनी जी, क्या आप जेलस हैं कि हमारे यहाँ पे कनाडा में बढ़िया सा वेदर चल रहा है, यहाँ पे सनी है? नया नया नया नया हरप्रीत, हम लंडनर्स जो है ना, हमें बारिश चाहिए। हम बारिश के बिना जी नहीं सकते बहन, हमें बारिश, ठंडक सब चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर धूप हो जाती ना तो हम वहाँ से भी कंप्लेन करते हैं, है ना। नेक्स्ट ट्रैक महेंद्र कपूर की आवाज़ में,
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: Welcome. This is the second hour of the evening show with Ashwini on Leica Gold Radio in London and Leica Radio in Greater Manchester. Yes, second hour जब हम पहुंच गए, first hour के गाने इतने पसंद किए और second hour में सभी ने पहला जो हमने गीत सुनाया आपको लता मंगेशकर की आवाज़ में, पहला नहीं भाई, वो तो second था. पहला था चप्पा चप्पा हरिहरन सुरेश वाड़कर, आहा क्या बात है. सेकेंड वर्स दिल भर दिल से प्यारे लता मंगेशकर की आवाज़ में कारवा फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत. नेक्स्ट ट्रैक जो आने वाला है वो है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और साथ में थोड़ी देर में हम बात करेंगे गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है. लेकिन उसके पहले फ़ोन लेकर जब आप रास्ते से जा रहे हैं तो एक क्लिप मैंने देखी जहाँ पे एक महिला जो है वो ब्राज़ील की ये घटना है कि वो मैन होल जो होते हैं ना उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, एक तो उसके ऊपर ना कभी भरोसा ना करें. तो ये मोहतरमा जो है अपने फ़ोन की तरफ देखते देखते हुए चलती जा रही है, वो मैन होल में जाके गिर गई, फ़ोन बाहर गिरा और वो मैन होल के अंदर गिर गई. अब ये आगे पता नहीं चला कि वो ऑब्वियसली निकाला होगा क्योंकि CCTV में अगर कैप्चर हुआ है तो वो बाहर निकली होंगी मोहतरमा. बट ख्याल रखिए जब भी कोई मैन होल है तो ट्राई करिए कि उसके इर्द गिर्द कहीं से जाए, उसके ऊपर से ना जाए, बिकॉज पता नहीं वो कितना ढीला हो ढाला हो. एंड विथ फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन जितनी कमाल की चीज़ है उतना वो हमें ज़ख्मी भी करता है. अच्छा, क्या आप लोगों के साथ में ऐसे हुआ? मतलब मेरे साथ में एक्चुअली हुआ है, थोड़ा एम्बेरसिंग है लेकिन फिर भी बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे अपनी है ना, इसलिए बता रही हूँ. वो ना ऐसे होता है कि हम सोफे पे या बेड पे लेटे लेटे फ़ोन देख रहे हैं और वो फ़ोन जो है धड़ से गिरता है हमारी नाक पे, और फिर जो दर्द होता है जब जब आपके नोज़ पे, जब जब आपके नाक के ऊपर वो जो भारी भरकम फ़ोन गिरा है, उसके भारत की उसके बाद की जो मतलब हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है ना, तो भयंकर मतलब हालत ख़राब होती है. मेरी तो आई ग ऐसे निकलता ही है मेरे मुंह से. अपने किस्से कहानियाँ सुनाना चाहते हैं बताइए.
1: This is like a gold. Reminisce those classics.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
3: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। धीरे धीरे शो हमारा आगे बढ़ते जा रहा है एंड टाइम फॉर द गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता या शायद लोग ज्यादा बात नहीं करते। तो भाई, चिल्ड्रेन विद डाउन सिंड्रोम मे नो लॉन्गर बी बॉर्न। जापानीज साइंटिस्ट हैव मैनेज्ड टू रिमूव द क्रोमोसोम लिंक्ड टू दिस कंडीशन। जापान रीच्ड अ रिकॉर्ड इंटरनेट स्पीड ऑफ 1.02 पेटाबिट्स पर सेकेंड, अलाउइंग द एंटायर नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी टू बी डाउनलोडेड इन जस्ट 1 सेकेंड। क्या ही खाते हैं भाई ये, क्या ही करते हैं समझ में नहीं आता। सीरियसली ना, क्या स्पीड में जा रहा है जापान आगे। द नंबर ऑफ पैराप्लिक पेशेंट्स हु रिगेन्ड मूवमेंट आफ्टर यूजिंग द मेडिकेशन हैज मेड राइजन टू 4, 100% ब्राजीलियन मेडिकेशन क्रिएटेड बाई रिसर्चर्स फ्रॉम UFRJ. Scientists created a biological mini pancreas made from living cells that produces insulin on its own and could change the future of diabetes treatment. In South Korea, they are testing separate lanes for fast and slow pedestrians to help reduce stress. France unveiled an artificial heart that can beat forever without the need for a donor. इतनी सारी, इतनी अच्छे अच्छे और प्यारी प्यारी न्यूज़ जब हमें सुनने मिलती हैं तो हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी को लेके पॉजिटिव होती हैं। और ये भी पता चलता है कि आटे दाल और सब्ज़ी रोटी और हमारे रोज़मर्रा के पैसे कमाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर शायद हम पहुँचे नहीं, जहाँ तक हम पहुँचे नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो वहाँ तक पहुँच के इतनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी रिसर्च या उनका अनसेटिस्फाइड होना या उनकी उत्सुकता, क्यूरोसिटी हम सबके लिए वरदान बन जाती है। देखिए, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं लोग, शायद इसी वजह से जो है वो कुछ ना कुछ नई डिस्कवरीज करते हैं। और उन सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जैसे कि हम सब जो खाना बनाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अर्न करते हैं, ये सब करते कराते हुए भी कुछ लोग हट के काम करते हैं। ऐसे कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप पहले चलते हैं इस बड़े ही प्यारे गीत की तरफ। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपको सुना रही हूँ ये गीत, ताजमहल फिल्म से।
0: Listen wherever you are by downloading the Laika Radio mobile app.

0: Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे. जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: इमोशन ऑफ द डे. इमोशन ऑफ

0: आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। कुछ ऐसे किस्से, कहानियां या न्यूज जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो यू गेट गूज बम्स और आप खुद इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबसे शेयर करने में बड़ा मजा आता है बहुत सारी चीजें जब मैं बताती हूँ, एंड दिस वॉज वेरी स्पेशल। तो एक बेटी जिसने अपने पापा को 4 साल पहले खो दिया, तो पापा के नंबर पे एवरी डे शी यूज टू मैसेज एंड आफ्टर 4 ईयर्स फाइनली शी गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम समबडी कॉल्ड ब्रैड। एंड उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा पापा तो नहीं, लेकिन हर सुबह तुम्हारे जो मैसेजेस आते हैं वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी गंवाई है ना। रिप्लेसमेंट होती है लाइफ में, एग्जैक्टली उस इंसान की नहीं होगी, लेकिन भगवान आपको सपोर्ट करने के लिए किसी न किसी को भेज देता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉडकास्ट जो हम आपको दिखाते हैं लाइका एक्स्ट्रा पे, एपिसोड नंबर 18 आ चुका है, मेनोपॉज, विच इज़ होस्टेड बाई रूबी रजा। काफ़ी चीज़ों पर यहाँ पर बातें हुई हैं, एंड इस बारे में जो है आप ये एपिसोड जो है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
5: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
6: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
5: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
8: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
7: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
8: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
7: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
8: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
7: કોલ 0208900-2323। ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
8: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
9: લાઈક અ રેડિયો નેટવર્ક પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર રાગસાન। On this week's Leica Extra podcast, Ruby Raza hosts a special on menopause featuring special guests.
10: So I've been navigating menopause on and off since January 2024, and it's happened suddenly. So I haven't had the kind of build up. It's suddenly. So it's been a journey, and now I'm navigating menopause without any HRT or anything, any medications.
9: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
11: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
9: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.37 Indian rupee, 375.06 Pakistani rupee, 447.63 Sri Lankan rupee, 165.33 Bangladeshi taka, 84.15 Afghani, 174.31 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
12: Leica Radio.
9: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
13: Leica Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £107.57 per gram.
13: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्वी. तो मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ, और हर एक दिन को हम एक इमोशन का नाम देके उसे सेलिब्रेट करते हैं. आज था टेरिफिक ट्यूसडे, LOVE प्यार. अभी प्यार के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं. जी हाँ, हमारे माँ बाप का प्यार सच्चा प्यार होता है, लेकिन ज़िंदगी में प्यार होता ज़रूर है. और जब आप प्यार करते हैं ना, तो उस इंसान के लिए आप बुरा नहीं सोचते, क्योंकि जब किसी के लिए आपको प्यार होता है तो आप बुरा सोच ही नहीं सकते. यू जस्ट लेट इट गो. आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं. बस जाने दो यार, हो गया. एक साइड में किसी ने प्यार किया, दूसरे ने नहीं किया. क्योंकि अभी जो मैंने गाना सुनाया उस पर कई बार ऐसे होता है कि हम प्यार इस शब्द को लेके बहुत सोचते हैं. तो प्यार का अनुभव हर किसी का अपना अपना होता है, और उस अनुभव के हिसाब से जो है हम अपनी राय बना लेते हैं, अपना अनुभव बना लेते हैं. एंड प्यार इज़ ब्यूटिफुल. तो ये ब्यूटिफुल फीलिंग आप सबको ज़िंदगी में मिले, आपके पास है, तो हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, प्यार दो, प्यार लो. बिल्कुल, चाहे संगीत से प्यार हो, चाहे जानवरों से हो, चाहे अपने बच्चों से, बीवी से, पति से, आपके रिलेटिव से, प्यार बहुत ब्यूटिफुल फीलिंग है. इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें. हाँ, अभी मैं शो छोड़ के जा नहीं रही हूँ, अभी है एक घंटा और है, लेकिन हमेशा की तरह आप करें क्या, जब प्यार वाला टॉपिक आता है तो अपने आप जो है उसके बारे में मेरे मुँह से शब्द निकलने लगते हैं. लास्ट ट्रैक इस आवर का जो है मोहम्मद अजीज और एस जानकी की आवाज में, गोरी का साजन.
13: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Leica Gold. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
14: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
13: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
14: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
13: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
15: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
16: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो.
17: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
18: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
19: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208767-7627.
20: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं.
1: ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com।
21: इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मजा आया ना, पहले तो मन की बात हो गई है ना, अलका याद नहीं करो, उदित नारायण की आवाज़ में मन फिल्म से सुनाया मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, उसके बाद में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गंगा जमुना से. अरे पैर थिरके ही होंगे, ऐसे कैसे होगा कि पैर नहीं थिरके आप सबके. एवरीबडी इज़ लाइक क्या बात है भाई, तुमने तो मतलब पैर थिरकाने के लिए हमें डांस करने के लिए मजबूर कर दिया. स्पेशली दिस सॉन्ग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स नैन लड़ जई हैं. एंड जिस तरीके से दिलीप कुमार की एनर्जी कितनी देखने लायक थी उनकी, क्या बात है क्या बात है. ओके, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत ही फैंटास्टिक प्लेलिस्ट इस एल्बम में भी आपका इंतज़ार कर रही है. सो आज जो है 2nd of June, कल 3rd of June, 6th month ऑफ दिस ईयर, आधा साल अब नियरली निकल गया. तो आज मनाया जाता है नेशनल आई लव माई डेंटिस्ट डे. हाय, ये कहाँ से आ गया भाई. साथ में रिपब्लिक डे इटली, अमेरिका द ब्यूटिफुल वीक, नेशनल रॉकी रोड डे, नेशनल ग्रेहाउंड डे, एंड मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नेशनल आई लव माई डेंटिस्ट डे. मतलब डेंटिस्ट की यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो कि क्या, मतलब आई लव यू बोलने जा रहे हो. Having a good dentist is essential to keeping a healthy smile. National I Love My Dentist Day, celebrated annually, is a fun way to show appreciation for those dedicated professionals. Actually, हमारे आसपास हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी ऐसे लोग हैं, इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्या हम उसके लिए gratitude में होते हैं क्या. So gratitude में रहना जो है वो अपनी ब्लेसिंग काउंट करना होता है. क्या आप अपनी ग्रेटिट्यूड को काउंट करते हैं? आई एम तो इन ग्रेटिट्यूड बाबा कि मैं यहाँ पे रोज़ आती हूँ, आप सबसे मुलाकात होती है मैसेजेस द्वारा, आप सबकी पर्सनालिटीज़ मैं भी बैठे बैठे यहाँ गेज करती हूँ. जैसे आप लोग सोचते हैं कि अश्विनी की आवाज़ ऐसे है तो ये कैसे दिखती है, ये कैसे बोलती है, ये क्या है. सो ना ऐसे मेरा भी अंदाज़ मैं लगाते रहती हूँ. आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की पर्सनैलिटी मेरे लिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है. तो आई एम इन ग्रेटिट्यूड फॉर द लवली एसोसिएशन दैट यू एंड मी हैव through this musical journey which is called the evening show with Ashwini.
1: Ashwini, brightening up your weeknights.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling could get you up to 127.90 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: मतलब एक्चुअली उफ ऐसे निकलता ही है ऐसे गीत सुन के। एक तो ठहराव वाला गाना और प्यार मोहब्बत इतनी इनोसेंस के साथ, इतनी प्योरिटी के साथ में भी हो सकती है। कितना सुंदर गीत था ये, बरसात की रात 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनाया आप सभी को ये गीत। अच्छा जी, गोल नाइट सर्विस ओवरनाइट सर्विस है तो ज़रूर सुनिएगा। रात भर बड़े ही ब्यूटीफुल ट्रैक्स आप लोगों के लिए लाइनअप कर देते हैं। रात में झगड़ा हो जाए, नींद ना आए, काम करना है, ड्राइव करना है, गोल नाइट सुनिए भाई। झगड़े वगड़े नहीं, म्यूजिकल प्रेमी आप लोग हैं तो बिल्कुल प्यार से रहिए। लाइका रेडियो 90s वालों के लिए स्पेशली हमने रेडियो लेके आए हैं जिन्हें 90s के गीत बेहद पसंद है। अगर आप पंजाबी गीत इंजॉय करते हैं तो इंजॉय लाइका रेडियो पंजाबी एंड लाइका गोल्ड, बॉलीवुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप। इतनी सारी एंटरटेनमेंट आप सबके लिए लेके आता है लाइका मीडिया, तो सुनते रहिए। और हमारी पड़ोसन जो हैं फिलहाल लाइका रेडियो पे, रेडियो वाली जो है वो उनका प्रोग्राम आप सबके लिए प्रेजेंट करी, बड़ी मस्ती करती हैं वो भी। तो हम लोग भी जब बीच बीच में ब्रेक्स में मिलते हैं तो बस एक दूसरे को छेड़छाड़ कुछ ना कुछ हम लोगों का चलता ही रहता है। अच्छा, हम लोग जो वीडियोज़ लेते हैं उसके अपडेट्स आप लोग देखते हैं हमारा लाइका गोल्ड रेडियो जो है, ये लंदन का रेडियो है। इसका जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आपको छोटी छोटी क्लिप्स जो मैं ड्यूरिंग द शोज लेती हूँ आपको दिखी जाती है। साथ में लाइका रेडियो मैनचेस्टर, उसके भी ऊपर आप हम जो ये छोटी छोटी क्लिप्स प्रस्तुत करते हैं या ऐसी मस्ती करते हुए जो क्लिक करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं वो वहाँ पे अपलोड करते हैं। मेरा अपना इंस्टाग्राम है रेडियो वाली अश्विनी, बिकॉज मैं रेडियो पे काम करती हूँ तो रेडियो वाली अश्विनी दैट इज़ माय इंस्टाग्राम। तो ज़रूर चेक करिएगा हम लोगों के सोशल मीडियाज और आपके कमेंट्स आके, फीडबैक आके हमें देते चलिए कि आप लोगों को, ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी हमें काफ़ी बार अपने फीडबैक्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, बिल्कुल हमारे सोशल मीडिया पे भी आइए, उसके बारे में बताइए और बस आगे बढ़ते चलते हैं आप और हम साथ में। तो अभी अगला जो गीत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, सरस्वती चंद्र से आपको सुना रही हूँ। 1968 में फिल्म रिलीज हुई थी ये लता मंगेशकर की आवाज़ में, एंड दैट इज़ फॉर द आर्टिस्ट ऑफ द वीक जो है इंदिवर जी, उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत है चंदन सबदन।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: So, you're geared up for this Making Tax Digital thing?
3: Sure, I just need some new mud boards, bag of cavity tyres and a couple of lintels.
2: Hey, MTD mate, digital taxes.
3: It's an extension down Station Road on the corner.
2: Dave, digital taxes mate.
3: Yeah, probably will need some 2x4s. I've got to take the van in for a new fan belt, squeaky.
2: Hey, Making Tax Digital, Dave.
4: Avoiding MTD? Sage makes tax simpler for sole traders. Search Sage MTD to get your free software today.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a
5: gold. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
9: London. Volume padhari do. A 20 June Bollywood ni powerful voice Bhumi Trivedi. Aavi rahi chhe London. Ram chahe, Leela chahe, Leela chahe. Dhamakedar musical night mate ready thai jao. Udi udi jai, udi udi. Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough. 6 p.m. to 11 p.m. टिकट्स बुक करो srevents.com पर भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंदन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
11: लाइका गोल्ड लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: रुपी, 447.33 श्रीलंकन रुपी, 165.26 बांग्लादेशी टाका, 84.60 अफगान अफगानी, 174.33 केनियन शिलिंग एंड 1.34 यूएस डॉलर्स.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £107.57 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: मिला लेंगी घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 41 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. 2nd of June ट्यूसडे बस यहां पे ख़त्म. मिलेंगे कल आप सबसे, लेकिन उसके पहले बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. अब मैं आप सबको गुड नाइट के मैसेजेस लिखना स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा जल्दी, इसलिए क्योंकि एक तो पूरी की पूरी हमारी स्क्रीन जो है वो लबालब भरी है आप सबके मैसेजेस से, और इतने सारे जो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं वो जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो एंजॉय करते हैं मेरे साथ में ये जो म्यूज़िक मैं लेके आती हूँ, और फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दी जाती कि आज क्या मीठा खा के आई मिठोरी हैं. आते से जब सैंडी के साथ में मेरी बैंटरिंग चल रही थी, गप्पे चल रही थी, तो मैंने कहा था मुझे बहुत भूख लगी, हम लोग बाहर बैठ के गप मार रहे थे तब, तो मुझे गुल जी यू सेड भूखी अश्विनी. तो मुझे लगा भूखी शेरनी वरनी रहती है ना, ऐसे कुछ फीलिंग आई एकदम से. आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ज़रूरी है कि आपकी और मेरी भी जहाँ पे जो बैंटरिंग चलती है ना मैसेजेस पे, वो मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है उन सब चीज़ों में. तो भाई हमेशा की तरह यही कहेंगे, प्यार जिंदगी है, प्यार दो प्यार लो. हाँ, प्यार के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, प्यार है ये ज़रूरी है. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए भाई, एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता होगा, क्योंकि आप एक म्यूज़िकल फैमिली, आप बड़े इमोशनल और बड़े सेंसिटिव और सेंसिबल इंसान हैं, तो अपने पावर का मिसयूज़ कभी भी ना करें. पावर का यूज़ करना ही है तो किसी की मदद के लिए कीजिए, है ना. लाइफ बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें. अपने आप का होप ख्याल रखें. येपी, कल तो मेरा फेवरेट दिन है ना, वंडरफुल वेंसडे जो होता है हमारा, फील गुड वेंसडे. और हाँ हाँ, कल ज़रा मुझे अलग मेन्यू भेजिएगा अपने डिनर प्लेट्स का. आप सब इतने सुंदर सुंदर मेन्यू भेजते हैं ना मुझे, इवन मुझे भी आइडिया आ जाता है. ओके, चलिए ऑन दैट नोट आई से लव यू ऑल, टेक केयर.
1: ये है लाइका गोल्ड.

0: ये है लाइका गोल्ड,
1: the voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02023963577. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444
9: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
10: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
9: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
10: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
9: दर्शन पण अने यूरोप पण।
10: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे।
9: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
10: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
2: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

कई खूबियों वाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली और गौरी गौरी गौरी और गौरी हक काली है जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर बस मिल जाए तो फिर एक एक एक एक चाय की प्याली एक एक एक एक चाय की प्याली।

नाजोकी गोपाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली ओ गोरी गोरी गोरी ओ गोरी हाथ काली जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर वो मिल जाए तो फिर ओ क्यों क्यों

0: Like a gold.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
4: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
3: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
4: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
3: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 0208574 8410
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
7: कृष्ण हरी यूके तैयार आहत ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जूनला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकिट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: But how? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simsy before we left London.
8: Simsy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच मन।

0: भव सागर से वो तर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरु जी, ठीक है।